अष्टम क्या है, अठवें गुरु बलवीरा बल वाले। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा। भाई गुरुदास जी कह रहे ने, हर कृष्ण पायो, गुरु हर कृष्ण साहब अठवें गुरु बड़े बल वाले सन। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा, जिन्हां ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्याग गया। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, बाल रूप विच जिन्हां ने कई तरह दे कौतुक करके अते दुखियां दे दुख दूर करके दुखियां नु सुख दिता। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु दा कौतक है कि जिन्हां ने छोटी उम्र विच ही दुखियां दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागे है। आओ गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दे जीवन बारे

जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर जिसने मुख नहीं मोड़ियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ

सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, दीप कपरदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मधुप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की, कटाकन को मोर चात्र के दे उलास, कटाकन को मोर चात्र के दे उलास, नाद बाद सुन रात कटे ना।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ा, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।

रह न सका, फिर देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जी। अज सतगुरां ने प्रीत नु तोड़िया, जदों सहदे ने अखां खोलियां की तकिया जिस गुरु नु याद करदा सी सतगुरु सामने खलोते, ते दूरों ही उची उची कहण लगा सतगुरु मैं सुनिया सी तू गरीब नवाज है, तू निमाणिया नु मान देना, जेड़े तेनू याद करदिया नु उन्हां नु दीदार देना, पर अज जाणिया तू सचमुच ही गरीब नवाज है, तू सचमुच ही निमाणिया नु मान देना, जेड़े तेनू याद करदिया तू उन्हां नु दीदार देना। सतगुरां दे दीदार कीते, अज बेड़ी विच सतगुरां ने चरण पाए, बेड़ी दूसरे कंडे लै गया, ते जदो सतगुरु दूसरे कंडे जा खलोते, भाई दया सिंह नाल दे सिख आ गए, ते अज सतगुरां ने इशारा कर दिता, दया सिंह इस गुरु नू, इस गुरु प्यारे नू कुछ कुमोरां दे, गरीब सिख है, मजदूरी करदा, सारा दिन मेहनत करदा, अज साडे प्यार करके इसने मेहनत भी नहीं कीती, कुछ मोहरां दे, भाई दया सिंह ने जेब विचों मोहरां कढ़ियां, ते जदों सहदे नू मोहरां देण लगा, ते सहदा पुब्बां मार के रो पिया, ते कहण लगा ओ पाछा ओ मैनू मोहरां नहीं चाहिए, मैनू धन नहीं चाहिए, दुनिया के लोग आउंदे हन, मैं उन्हां नू भी दरिया पार कराउंना हां, मोहरां दे जांदे हन, धन दे जांदे हन, अज तुसी आए हो तुहानू भी दरिया पार कराया, तुसी मोहरां दे गए, ते दुनियादारां विच तुहाडे विच फर्क किहड़ा है, मैनू धन नहीं चाहिए, मैनू मोहरां नहीं चाहीदियां। ते साहब अज प्यार दे विच वस होके कहण लगे, सहदिया फिर की चाहिए, मंग की मंगदा, अज जो तू मंगे तेरी झोली विच ओह दात पा देवां। ते सहदे ने गल विच पाया पल्ला, नेत्रा जो जल वेंदा, ते हाथ जोड़े ते कहिंदा, मोहरा देख के गलो ना ला मैनू, किते शकल ना मेरी विसार छड़ी, अज तुसी आए ते मैं पार कीता, कल नू मैं आवां मैनू कार छड़ी, बस होर कुछ नहीं तेरे को मंगना, अज तुसी आयो मैं तुहानू दरिया तो पार कीता है, ते कल नू मैं संसार छड़ के आवां, मैनू भव सागर तो पार कर दे, होर कुछ नहीं हो मंगना। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने गलवकड़ी विच लिया, ते घुट के कीता प्यार, अज सतगुरु बख्शिश करदे करदे अज मुस्कुराउंदे होए अज सहदे नू वर दिता, ते साहिबां ने भी कहा ओ सहदिया तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, अज असी आए ते तू पार कीता, जा इक्की कुलां तेरियां सारियां, जा सहदिया तेनू कल्ले नू नहीं, तेरिया इक्की कुलां दा उधार कर देंदा। आओ भाई घर विच एक गुरमुख हो जावे, इक्की कुलां दा भी उधार कर देंदा है, घर विच इहो जे प्यार करन वाला किते पैदा हो जावे, दर्शना दी तांग हर वक्त मन विच वैराग जी दे होवे, इक्की कुलां दा उधार कर

हौ रह न सका बिन देखे प्रीत मां मैं नीर वहे वह चले जियो कोई रचना वांझी ना रवे आओ एक बार इन्हां तुकां नूं सारे पढ़ लईए।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख तार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार कुदरत

असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सला सुवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देव त्या दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईत नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जिवत सदी वड्याई, ज्योतिष भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद अवरा साद, संजोग विजोग दो

आओ। भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। जियो डरत है।

माणे हैं, सौ नेड़ै धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं। पैकिया देह सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी जां सौ तरे प्यारो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे।

0: प्रभु के सिमरन गर्ब ना बसै,
1: प्रभु के सिमरन दुख चमन सै,
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरै,
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन तरै,
0: प्रभु सिमरत कछ

और किसे स्थान से जुल्म दिया हनेरियां चुलियां ने पापां दे बदल छाए ने ओ समय इतिहास का खूनी पत्रा बनदा गया। समय समय अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने वखरे वखरे रंगा राही किसे पीर फकीर जा दरवेश दे जामे विच प्रगट होके सारी कायनात दे दुखां दर्दां दा नाश करन लई आप सहाई हुंदे रहे। दुष्ट दमन दशमेश पिता ने उस समय अवतार तारिया जदों के गरीब मजलूमा दुखियां भी चीखो पुकार सुन वाला और रखिया करन वाला धरती उत्ते होर कोई नहीं सी। पिता तो पुत्रा तक सारा सरबंश वतन कौम दे लेखे लाके गुप्त हनेरी रात नू माछी बाड़े दे बिया बान जंगलां विच टीम दा सराणा लाके चोजी प्रीतम लोखा भाणे ता रोड़ा उत्ते सुते हुए सन, पर असल विच दशम पिता सुते हुए नहीं सन। भला कदे औखिया घड़िया विच भी कदे किसे नू रोड़ा उत्ते नींद आ सकती है? जदों के लुकाई दे दुखां नू किसे ने आप जान बुझ के सीने नाल लाया होवे। कलंगियां वाले दशम पिता उस वेले अखां मीटी शायद इस ख्याल विच मगन सन कि किस तरह जुल्म दियां जड़ां पुट के देश दे गलों गुलामी दा फंडा लाया जाए। लुकाई ले सब कुछ वार के

हे परमात्मा, मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने, गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।